0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़िया
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677 Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
5: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور راہ حبیب خدا میں بکھر گئی

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्के रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर।

0: उन पर तो अताएं होंगी ही, अच्छों का तो हाल अच्छा होगा। सरकार करम हम पर न किया तो हम जैसों का क्या हो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़ियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274-306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रैडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: ब्रैडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड 424453।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: अज मेला देखण आईया गुड़िया
5: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीज रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
9: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

Yeah.

ラジオ

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिमिशबनम है तू, लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: वाइज कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर

0: पर है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगो, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
5: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
5: आप भी
4: जरूर आइएगा। उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
11: Call the studio now, 01274306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया कुड़ियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
9: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट
10: टैक्सी लाइसेंस
8: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
9: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services

0: With a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
2: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
1: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
2: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
1: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
2: लीड्स रोड फेस्टिवल
1: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
2: आप भी
1: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
2: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
1: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644
3: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
5: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
5: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
6: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
8: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: me.
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: अज मेला देखण आईया कुड़ियां
5: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीज रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
1: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइट रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
9: Ragon mein wo lahu baki nahi hai, wo dil, wo arzu baki nahi hai. Namaz o roza o qurbani o hajj, ye sab baki hain, tu baki nahi hai.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रैडफोर्ड में
5: जहां

0: पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
1: फैशन, फूड स्टॉल, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
0: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 and 16 August 2026
1: लीड रोड फेस्टिवल।
0: बेफोरेजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
1: आप भी
0: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
0: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट,
7: 14:13 AM, DAB+, मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम ए पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़िया
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Foot Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677 Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
9: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
9: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260 078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती

0: डिपॉजिट बढ़ाइए, आज ही पर चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम ए पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़ियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिगो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
4: मेनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रैडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रैडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428

0: अदर ब्रांच अब मोगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
0: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
0: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
0: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Let's rock. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला में खड़ आईया गुड़िया
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
9: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
9: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: Do you want to do one more job? Please.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रून
2: एंटरटेनमेंट और एंटरटेनिंग प्रोग्राम होता है। बिल्कुल जी, ब्रेफरेशन रेडियो 14:13 AM पर आशा अख्तर सुबह 9 के साथ आपको सलाम अर्ज करती हैं। खुश आमदेद, सुबह बखैर जी, बखैर अगले हमारी वेबसाइट brafordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 आते ही जी कॉल्स आपके लिए मैंने बहाल कर दी है। प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारे प्रोग्राम की जान तो जाहिर बात है सुनने वाले होते हैं, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी दिलचस्पी से, दिलजमई से प्रोग्राम मैं कहते हूँ मेरा सुनते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और हमारे पास एक और नंबर है जी, व्हाट्सएप नंबर हमारा 07800-599-563, आप इसके ऊपर भी हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत आपकी कॉल्स का एहतराम किया जाएगा और स्टूडियो में जब आप स्टूडियो के नंबर 01274306677 पर नंबर आप कॉल मिलाते हैं, आपकी कॉल को हमेशा इसका खैर मकदम किया जाता है। अकॉर्डिंगली आपकी ख्वाहिश और डिजायर का जी ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सामरीन इकराम, सुबह 9 में ताजा ताजा खबरें हैं, ब्यूटीफुल हमारे पास अकवाल जरिए हैं, ब्यूटीफुल टॉपिक है, टॉपिक ऐसा कि आप झूम उठेंगे, वाओ, हमेशा की तरह वेरी सिलेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव। आप कहेंगे वाओ, तबीयत हशाश बशाश हो गई, क्यों ना हो गई। मौसम की रंगीनियां, मौसम की ताजगियां, मौसम का साथ हमारे साथ हो, तबीयत खिली खिली, निखरी निखरी उजली उजली रखती है। और सुबह नौ का मकसद भी यही होता है कि आपकी तबीयत को खुश रखना, आबाद रखना। और बहुत सी ढेरों ढेर दुआएं भी होती हैं, सामने इकराम, मशक्कत आमेज काम में, मुशक्कत खेज कह लें हम, मुशक्कत से भरपूर काम है जी, जहां भी हर काम को मेहनत लगती है, हर काम हर हुनरकारी में हमारी मेहनत, और फिर ये कहें कि मेंटली इतनी स्ट्रेस समटाइम्स होती है, दिल चाहता है कि कोई बड़ा, वो कहता है, कहते हैं ना कि तफरीह तबाह से भरपूर कुछ खुशगवार म्यूजिक सा हो जिसकी शुरुआत जिससे की जाए अपने काम की, और ताकि थकावट फील ना हो। किसी भी शुभाय जिंदगी में ताल्लुक हो सकता है इन अफराद का। हमारे पास जो इस वक्त मैंने कहा पहले आपकी तबीयत जो है वो बहाल की जाए, क्योंकि जो मौसीकी के शौकीन जिसे कह लें, जिनको जी बड़े दिलचस्प सॉन्ग्स, वो कहते हैं कि भई हमें रूखे फीके सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनाना, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। मैंने सोचा जी ठीक है, आप के लिए प्रोग्राम है, फिर आप ही की नजर हम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग करते हैं और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है, टॉपिक भाई आपको थोड़ा सा सस्पेंस और सरप्राइज तो मैं रखती होती हूँ हमेशा की तरह। धीरे धीरे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, धीरे धीरे आपकी इच्छा और मन की तमन्ना जो है हम अच्छी तरह पूरी करेंगे, क्योंकि आप जो है मौसीकी के दिलदादा है, म्यूजिक के। और जो मुझे फीडबैक मिलती है कि प्लीज आपने खुश्क म्यूजिक जो है हमारी किस्मत में नहीं लिख देना, तो मैंने सोचा भाई आज का हर एक जो सॉन्ग है आपकी तफरीह तबाह को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और खूबसूरत सा हो। हमारे जो मौसीकी की दुनिया में, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फनकार जो होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे जो होते हैं داد پاتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ان کے فینز ہوتے ہیں, اور کسی ایک جگہ, مخصوص جگہ, علاقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک مخصوص جگہ سے تعلق رکھنے کے باوجود پوری دنیا پہ ان کی آواز جب چھائی ہوتی ہے. اب میں بات کو مزید ادھر ادھر تو نہیں لے کے جاؤں گی کہ جی اس وقت ویسے پوری دنیا میری بھی آواز سن رہی ہے, آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. بس یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں, سیانے کہتے ہیں, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بالکل, بڑے بڑے عقل مند حضرات, خواتین حضرات میرا پروگرام بڑے شوق سے سن رہے ہیں, تھینک یو. جی دور کیوں جانا ہے, جی ہماری آشا بھوسلے جو ہے بین الاقوامی سطح پر ایک نام مانا جاتا ہے, اور ان کی یہ لیرکس جو ہیں واو, ود ویڈیو تو اس کی کیا ہی بات ہوگی. آپ کو یہ ایک غزل ہے جی, اور غزل کے شوقین اور دل دادا جو لوگ ہیں یقیناً اسے پسند فرمائیں گے. چلیے دیر کس بات کی ہے, وزیر صاحب اکرام آپ کی نظر آشا بھوسلے کی یہ خوبصورت سی غزل کرتے ہیں, رومانٹک غزل اسے لکھا گیا ہے جی. آئیے رومانٹک سی غزل جو ہے تاکہ موڈ بحال رہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ چلیے سنتے ہیں جی.

0: जी समय निक्राम चले। अब मैं सोच रही थी कि जी थोड़ा सा लॉन्ग है ये सॉन्ग, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही जल्दी हो गया। गाना ब्यूटीफुल था, लेकिन चले खैर। ब्रेफरेशन रेडियो 14:13 AM पर हमारी एक ब्रेक भी हमारा इंतजार कर रही है। हमारी वेबसाइट brefreshionradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। सॉन्ग आपके लिए बहुत जबरदस्त तैयार करके रखे हैं जी, योर फेवरेट। यू विल एंजॉय दिस म्यूजिक टुडे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह तो कहना होता है ना, अच्छी बात है। एनीवे, मैं देख रही हूं कि ये छोटा सा कुछ लिरिक्स जो है आपकी खिदमत में पेश कर दूं, तो चलिए। नहीं भाई, अभी एक मिनट रह गया है ये ब्रेक का जो टाइम होता है ना, हमें बड़ी एहतियात से देखना पड़ता है, क्योंकि भाई आप लोगों की कमर्शियल्स, आप लोगों की जो एड्स हैं वो चल रही होती हैं, तो उनको प्रमोट करना हमारा अवलीन फर्ज है भाई, तो फर्ज के ऊपर नजर होती है। इसके अलावा हमारा नंबर जो है 07800599563, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। अब क्या कहूं कि मैं खुद भी कल जो प्रोग्राम था महबूब इलाही साहब का भी, तो अक्सर मेरा प्रोग्राम जो होता है ज्यादातर मैं चलते फिरते कहीं किचन में हूं, कोई काम कर रही हूं कोने कुदरे में, लेकिन ये होता है कि हमारा ऐप जो है अगर आप डाउनलोड कर लें, इसकी बहुत सहूलत है, और गाड़ी में भी आप DAB पर, DAB पर हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरती से सुनते सुनते सुहाना सुहाना सफर जो है वो तय कर लेते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
1: एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk, दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15-16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ, एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th and 16th of August 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रेडफोर्ड मेला।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
7: आपकी शान
5: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferlane Bradford PD95 ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स 1 Dufferlane Bradford PD95 ER 01274 056 014 सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: क्या पल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

बिल्कुल मजर सावन इकराम ब्रा फेडरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम में, इसलिए खूबसूरत कहूंगी कि टॉपिक आज का आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज करती हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं जी, बिल्कुल जो हमारा और आपका साथ है एक 10 बजे से 1 बजे तक होगा। तो वो वैसे ये अब इसकी बात है कि जब हम कहते हैं ना 10 से 1 बजे तक, थोड़ा सा अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 फीट 22 फीट की बुलंदी पे जब जाता है तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है। मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमोबेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पे जहाज जाता तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीन हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना कोई जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम चुप करके बैठे हुए डराती क्यों तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो brafreshnradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। हमारे और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि सॉन्ग जो है एक इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं के थोड़ा सा हट के हमेशा ही तरह आयशा का मकसद हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरी है, आपका जो काम है, वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत कश है भाई, हम क्यों नहीं भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला, बिल्कुल जी मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जराह तज़किरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मशक्कत कर रही है हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। उससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना, बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया मेरे सामने ये शेर है, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। टॉपिक हमारा क्या मकसद है इंसान की तखलीक का, हमारा मकसद हयात क्या है, क्या है भाई हमारा मकसद, क्यों दुनिया में आए हैं,
ठीक है, इसके बारे में बातचीत भी रहेगी, आप भी हमें फीडबैक दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, और इससे पहले कि फिर आप कहें बहुत शकील बातें हो गई, खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं, न्यू पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग 2026, आइए जरा स्मार्ट फरमाते हैं।

जी बिल्कुल मजे। सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है। म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है, और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है, वाओ अमेजिंग, आप खुद सुनेंगे, आप कहेंगे जरा हट के है ये। जी बिल्कुल, ए बड़ा बहुत जरा हट के ते बड़ा दिल छू लेने वाला। जी ताड़ी नजर होने कर दे, बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज ये बोले थे, फिर और तुसी को भी टू मच हो गया। इसलिए फिर वापस बैक टू सिंगर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी, और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर नाजर उतनी देर में कर ले और सोचे, हम सब सोचे हमारा जिंदगी में आने का मकसद। अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ उससे पहले, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk है जी, और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी। आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हाँ जी, मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें, वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है, एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें, कि भाई हम क्या करें, लोगों ने बना दिया ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है, खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान, बल्कि वही चलें अब करते हैं और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा। आपके पास बहुत नॉलेज होगा, मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इल्म लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है, मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद है, आपके अंदर ये सारा नॉलेज है, वो अट्रैक्ट करता है आपको, और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा। मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहती हूं कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन ले। एक तो जिन्होंने फरमाइश किया ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे, तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए। आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। मैं कहती हूं कि वाकई दाद देने को दिल करता है। फरमाइश करने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जिसने ये सॉन्ग गाया है उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। म्यूजिक अगर ऐसा हो तो वाकई मैं कहती हूं प्रोग्राम को तो चार चांद लगने ही लगने, और हमारी ऑडियंस इतनी खूबसूरत चॉइस की हामिल हो तो वे हम उनको दाद देते हैं। हमने आप हमें अपने हमारे प्रोग्राम की क्या दाद देंगे, हम तो आपको दाद देते हैं कि आपकी वजह से हमने इतना खूबसूरत सॉन्ग सुना। वाकई वाकई बेहतरीन म्यूजिक जी, बहुत बेहतरीन। क्या करें, कैसे करें कि गड़ी जो है ना हमारी, वो हमें याद कराती है कि चलते हैं हम ब्रेक पर। अभी तो चलने से पहले ये एक जी हमें अभी फीडबैक जी हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त जी, ये मैं देखती हूँ जी इनका क्या आया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग हमें पाकिस्तान से श्याम जी ने ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच श्याम जी, आपको मोस्ट वेलकम हमारे प्रोग्राम में। ये खुद इनके प्रोग्राम्स इतने लाजवाब, इतने बेहतरीन कि ये वंडरफुल जिसे कहते हैं ना, एक प्रेजेंटर है हमारे पाकिस्तान में श्याम जी। और ब्यूटीफुल सॉन्ग जी, बहुत शुक्रिया। नैना द की करा, क्या बात है, लव दिस सॉन्ग। आप क्या, मेरे ख्याल में सबने पसंद किया है। आई लव दिस सॉन्ग इज वेल, आई रियली रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग, आई रियली लव दिस सॉन्ग, ब्यूटीफुल एवर जी। और सॉन्ग अच्छा जी शामिल होता है, वो जी कह रहे हैं कि जी मेरे हर शो में ये प्रोग्राम, ये हमारे पास से चूंकि व्हाट्सएप का ये जो है नंबर है जी, तो वो हमें पाकिस्तान से इनके जो कमेंट्स है, इनके जो फीडबैक है, वो बैन अल-अक़वामी सतह पर मिलती है जी, और बेहतरीन। और आप सबका जहां जहां दुनिया भर में हमें जिस जिसने ज्वाइन किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपका प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। बल्कि देखिए आप इतनी खूबसूरती हमें भेज रहे हैं चॉइस और फरमाइश, तो इसकी वजह से सबको ये प्रोग्राम जो है सुनने को मिल रहा है। और वंस अगेन आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी घड़ी जो हमें लेके जा रही है ब्रेक की तरफ, तो आफ्टर द ब्रेक इससे भी बेहतरीन बेहतरीन नहीं, हर सॉन्ग की अपनी एक होती है, क्या कहते हैं उसका यूनिकपन होता है, हर सॉन्ग यूनिक होता है। लेकिन और भी चलेंगे, ऐसे कह लेते हैं, और भी बहुत से खूबसूरत हमारे पास म्यूजिक नगमात है। और हमारे पास जो हमारे टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे, यू विल like that as well. Challenge
1: Asian Radio. And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So
1: radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable.

0: इसके अलावा कंपोजिटर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दूल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी आइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
1: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
4: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
4: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
4: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
7: वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये हमारा भी जो रेडियो का चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेडियो ब्रेडफेशन रेडियो 1430 AM। वाओ जी, हमने भी बड़े बड़े हवाए रोज آپ لوگ جیسے سراہتے ہیں اور خود اتنے نالجیبل پرسنالٹیز جو ہیں وہ سن رہی ہیں پروگرام, تو واقعی پروگرام کو کرنے کا دل کرتا ہے. اور مجھے کال موصول ہوئی ہے جی ہمارے اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر پر پاکستان سے, تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کا پھر یہ خرچہ بھی آتا ہے.

0: जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

जी बिल्कुल, सावन इकराम ब्राफ्रेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम। मैं इसलिए खूबसूरत कहूंगी कि टॉपिक आज का आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज करती हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा और आपका साथ है 10 बजे से 1 बजे तक होगा। तो वैसे ये अब उसकी बात है कि जब हम कहते हैं 10 से 1 बजे तक, तो थोड़ा सा अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 फीट 22 फीट की बुलंदी पे जब जाता है तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है। मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमी बेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पर जहाज आता तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीन हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं, तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना कोई जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम चुप करके बैठे हैं, डराती क्यों तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो brafrationradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी हमारे। और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि सॉन्ग जो है एक इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं क्या थोड़ा सा हट के, हमेशा ही तरह आयशा का मकसद होता कि हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरीह, आपके जो काम है वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत कश है भाई, हम क्यों नहीं भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला। बिल्कुल जी, मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जरा तज़किरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मशक्कत कर रही है, हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। इससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया मेरे सामने ये शेर है, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। बहुत खूबसूरत है टॉपिक हमारा, क्या मकसद है इंसान की तखलीक का, हमारा मकसद हयात क्या है, क्या है भाई हमारा मकसद, क्यों दुनिया में आए हैं।
ठीक है, इसके बारे में बातचीत भी रहेगी, आप भी हमें फीडबैक दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, और इससे पहले कि फिर आप कहें बहुत शकील बातें हो गई, खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं, न्यू पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग 2026, आइए जरा समात फरमाते हैं।

जी बिल्कुल मजे। सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है। म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है, और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है, वाओ अमेजिंग, आप खुद सुनेंगे, आप कहेंगे जरा हट के है ये। जी बिल्कुल, ए बड़ा बहुत जरा हट के ते बड़ा दिल छू लेने वाला जी ताड़ी नजर होने कर दे, बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज जी बोले थे, फिर और तुसी को भी टू मच हो गया इसलिए वापस बैक टू सिंगर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी, और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर और नाजिर उतनी देर में कर लें और सोचें, हम सब सोचें हमारा जिंदगी में आने का मकसद। अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ उससे पहले, हमारी वेबसाइट bradfordnationradio.co.uk है जी, और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी। आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हाँ जी, मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें, वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुदा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है, एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें, कि भाई हम क्या करें, लोगों ने बना दी है ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है, खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान, बल्कि वही चलें अब करते हैं, और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा, आपके पास बहुत नॉलेज होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इल्म लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है, मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद हैं, आपके अंदर ये सारा नॉलेज है, वो अट्रैक्ट करता है आपको, और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा। मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहती हूं कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन ले। एक तो जिन्होंने फरमाइश किया ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे, तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए। आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। मैं कहती हूं कि वाकई दाद देने को दिल करता है। फरमाइश करने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जिसने ये सॉन्ग गाया है उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। म्यूजिक अगर ऐसा हो तो वाकई मैं कहती हूं प्रोग्राम को तो चार चांद लगने ही लगने। और हमारी ऑडियंस इतनी खूबसूरत चॉइस की हामिल हो तो वे हम उनको दाद देते हैं। हमने आप हमें अपने हमारे प्रोग्राम की क्या दाद देंगे, हम तो आपको दाद देते हैं कि आपकी वजह से हमने इतना खूबसूरत सॉन्ग सुना। वाकई वाकई बेहतरीन म्यूजिक जी, बहुत बेहतरीन। क्या करें, कैसे करें कि गड़ी जो है ना हमारी, वो हमें याद कराती है कि चलते हैं हम ब्रेक पर। अभी तो चलने से पहले ये एक जी हमें अभी फीडबैक जी हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त जी, ये मैं देखती हूँ जी इनका क्या आया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग हमें पाकिस्तान से श्याम जी ने ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच श्याम जी, आपको मोस्ट वेलकम हमारे प्रोग्राम में। ये खुद इनके प्रोग्राम्स इतने लाजवाब, इतने बेहतरीन कि ये वंडरफुल जिसे कहते हैं ना, एक प्रेजेंटर है हमारे पाकिस्तान में श्याम जी। और ब्यूटीफुल सॉन्ग जी, बहुत शुक्रिया। नैना दा की करा, क्या बात है, लव दिस सॉन्ग। आप क्या, मेरे ख्याल में सबने पसंद किया है। आई लव दिस सॉन्ग इज वेल, आई रियली रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग, आई रियली लव दिस सॉन्ग, ब्यूटीफुल एनर्जी और सॉन्ग। अच्छा जी, शामिल होता है वो जी, कह रहे हैं कि जी मेरे हर शो में ये प्रोग्राम, ये हमारे पास से चूंकि व्हाट्सएप का ये जो है नंबर है जी, तो वो हमें पाकिस्तान से इनके जो कमेंट्स हैं, इनके जो फीडबैक है वो बैनल अक्वामी सतह पर मिलती है जी, और बेहतरीन। और आप सबका जहां जहां दुनिया भर में हमें जिस जिसने ज्वाइन किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपका प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। बल्कि देखिए, आप इतनी खूबसूरत हमें भेज रहे हैं चॉइस और फरमाइश, तो इसकी वजह से सबको ये प्रोग्राम जो है सुनने को मिल रहा है। और वंस अगेन आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी घड़ी जो हमें लेके जा रही है ब्रेक की तरफ, तो आफ्टर द ब्रेक इससे भी बेहतरीन बेहतरीन नहीं, हर सॉन्ग की अपनी एक होती है, क्या कहते हैं उसका यूनिकपन होता है, हर सॉन्ग यूनिक होता है। लेकिन और भी चलेंगे, ऐसे कह लेते हैं, और भी बहुत से खूबसूरत हमारे पास म्यूजिक नगमात है। और हमारे पास जो हमारे टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे, यू विल like that as well. Challenge
1: Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
6: क्वालिटी विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आप घरों को चार चांद लगाते
7: और प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: लिस्टर ब्रैडफोर्ड BD7JL।
6: खूबसूरती बढ़ाइए, आज ही चॉइस का नंबर आइए
7: 07431644।

0: Shops and Mela Shopping, featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
2: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
2: जी नहीं करते, कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
2: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
1: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
2: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
5: वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये हमारा भी जो रेडियो का चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेडियो ब्रेडफोर्ड रेडियो 1430 AM। वाओ जी, हमने भी बड़े बड़े हवाए रोज है, एंड देन इंजीनियर तो कभी किसी ने नहीं गाता है, हमने कभी ये नहीं सोचा था हम गर्दारी संभाले नहीं। नर्स कभी कभी कभी कोई लिख देती थी, बस डॉक्टर से नीचे नहीं उतरना, और हर किसी से पूछो, हर किसी से पूछो। और मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ी मजे की बात है, और मैं चाह रही हूँ मजे मजे की बातें सुनाते हुए हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ता जाए। हम जब अपने अल्लाह याती देव में ब्रादरान की तरफ बिशा जाहिर बात है उनसे बचे होते थे, फॉर्म फिल करवाने आते, भाई प्लीज फॉर्म फिल कर दो ना, तो हाँ जी तो क्या बनना है, उन्होंने कहना बस इस्लामियात का लिख देना, होम इकोनॉमिक्स लिख देना। और हम कहते हैं होम इकोनॉमिक्स क्या है, अब दिस इकोनॉमिक्स है ये, अब उसको पता चल रहा है, लेकिन

बच्चे ने वो हमारे यूजली आपको पता है कि खानेदारी करवाते थे डिफरेंट देखते कि किसने, आपको बहुत कुछ पता होगा इस बारे, इसकी तफसील में क्या जाऊं, और कुछ वो जैसे कहते हैं हम यहाँ भी बोलते हैं चिकी लफ्ज के बड़ी, वो जी घर से पका के ले आती है और उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती कि वाह टीचर उनको हम ही बड़ा गुस्सा चढ़ता, हम बड़ी वो बासूल के तरीके पे हम वहां पे खाना बना रहे हैं, हमारी सिस्टर्स हमारे साथ में खड़ी होती बड़ी ये क्या करी तो वो सारी हेल्प करवा देती चुपके से बैठ के, बड़ा खूबसूरत दौर, बहुत ही अनमोल जो कि आ नहीं सकता। तो खैर फिर वो इसी तरह से हमें तो ये मतलब दिया जाता, तो फिर हम कहते अब मैं अपना एम ऑफ लाइफ ये लिखूं कि मैं होम इकोनॉमिक्स पढ़ के मैं क्या करूंगी इसको, तो तब समझ नहीं आती थी कि खुदा की बंदी ये तो तुम बहुत अच्छी बन जाओगी, एक तुम अपनी ड्यूटीज अपने बहुत इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं ना बस डॉक्टर से नहीं हिलना, हमने तो बंदे क्योंकि डॉक्टर ये करता है डॉक्टर वो करता है खुदाया अब मैं क्या करूं, तो फिर कभी कभी आ जाता था कि चले टीचर बनना है, तो घर वालों ने क्या पूछना है कि क्या बनना है, देखिए बहुत ही बेहतरीन चुटकला है ये, बड़ा अच्छा लगता है, जरा ही तस्करा बात छिड़ गई है तो किसी ने पूछना, उन्होंने बड़े वो मजाक के मूड में होते थे ना, बस छेड़ना है उन्होंने तो कहना क्या बनना है जी, मैंने कहना उस्तानी, वो बस जल्दी में निकल मस्तानी, उन्हें पीछे मर जाना, तुमने कहा क्यों ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो ये बातें जो होती है ना ये इस ना पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम, लेकिन मुझे याद आ जाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी खूबसूरत सी बातों को दोहराना और आपसे, और शायद मुझे अब तो मुझे पता चल रहा है कि रेडियो में बातें करते करते ना मुझे बाई बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मैं ज्यादा बातें ना करूं, वरना बात कुछ कुछ ऐसी नजरें होती हैं कि आप कब चुप करेंगी और खैर चले छोड़ेंगे, तो वो भी इसलिए कि देखे कभी कभी मौका मिलता है बात करने का। खैर इसी बारे की आपके पसंदीदा और फेवरेट हम सॉन्ग के ऊपर जाएं जी, मेरे पास एक जो नामवर शख्सियात हैं उनके कुछ बहुत ही चुटकले हैं मेरे पास, तो क्या ख्याल है कि आयशा अख्तर के छोड़े आप क्या मेरे चुटकले सुनने आप आए बढ़ते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत देखें जी। अब ये बात किसने कही है बाद में बताती हूं, बात सुन ले, दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जराबों का है कि एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, क्या खूबसूरत बात है, किसने कही है, वस्तन सर हुसैन तारड़ साहब ने। दूसरी मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत बात कह ले चुटकला कह ले, बहुत खुश होंगे वैसे हमारे ब्रादरान साहब हमारे मर्द हजरात, ये बहुत ही एक बेहतरीन सा चुटकला मेरे पास है कि मुझमे और मेरी बीवी में बड़ा अजीब सा इत्तफाक है, नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है, ये किसने लिखा है जी, इब्ने इंशा ने, इंशा जी उठो अब कुछ करो तो ये इब्ने इंशा ने लिखा है, क्या ख्याल है जी आपका। आगे मेरे पास एक चुटकला है जी, वो कहते हैं कि जी मैं खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को पाकिस्तान में, सॉरी मैं ऐसे पाकिस्तान, देखिए अब बात हो रही है, हम कोई बुरी बात तो नहीं कह रहे, एक यहाँ पे फ्रीडम है बात करने का, तो फ्रीडम के लिहाज से बात कर लेंगे कि पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को आता है, वो खामोशी से खाते हैं, किसने बात कही है ये, देखिए मैंने नहीं कही, आप मेरे ऊपर फतवे नहीं सादर कीजिएगा, ये अनवर मकसूद साहब ने कही ये बात, क्या ख्याल है। अच्छा जी आगे मेरे पास है एक खूबसूरत सी बात कि हम इतने अमन पसंद है कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है, क्या ही बात है, ये किसने लिखी है जी, ये लिखते हैं मुश्ताक अहमद यूसफी साहब। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं,
कि दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। कौन हो सकते हैं? खादम सादात पाकिस्तान। सोचिएगा, ये हकीकत है जी। आगे है जी, हमारे बाचा खान ने फरमाया है कि हिसाब अगर जज से मांगो तो तौहीन अदालत, अगर मौलवी से मांगो तो काफिर, और अगर जर्नैल से मांगो तो गद्दार। क्या बात है जी। हमने अपना दामन जो है एक साइड पे रखा और आपको बड़े खूबसूरत से ये चुटकले जो है सुनाए। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, मैंने तो एज इट इज आपको सुना दिए। वैसे वाकई ये हकीकत भी है, सोचिएगा इस बात में, इस बात के बारे में। सामिन इकराम जी, इस वक्त हमारे पास एक खूबसूरत सा सॉन्ग है, आप बताइएगा, आप सबके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। आइए खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं।

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15-16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रैडफोर्ड में जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड रोड फेस्टिवल
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काकी की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुटलैंड ब्रैडफोर्ड BD95BR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: जी हाँ, बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता, ऑफर जी मेरे न्यू स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।

जी बिल्कुल सामिन कराम, हमारे पास इस वक्त एक होल्ड किया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, आइए ये सुनते हैं, फिर गुफ्तगू को हम अपने इख्तितामी मराहल में शामिल करेंगे।

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. And relishing in live performances from Amber Hainpuri, H. Dami, Meet Sadhu, Amma Blake, and much, much more. Sunday, 2nd August at Parkfield. We'll see you.

0: क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
1: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
3: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
0: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
3: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
3: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
4: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
5: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए Bradford Asian Radio.
6: Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया कुड़िया
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन खाए
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77. On 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको के हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा

0: अरे पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवी
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio.

ये ब्रॉकफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274 30 6677 पर खुशामदीद कहेंगे।

चाल। साहब हमारे अहवाल का ना पूछिए, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम और फजल कर रखा है। हाँ, मौसम के अहवाल आज बहुत ख़तरनाक हैं। मौसम के हवाले से आपको बताता चलूं, जब मैं प्रोग्राम करने आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था तो टेम्परेचर 33 सेंटीग्रेड था या सेल्सियस था। शदीद गर्मी है, हफ्स का एहसास हो रहा है और आज ब्रैडफोर्ड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और दर्जा हरारत 35 से 36 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अम्बर वार्निंग है। बुजुर्गों के लिए बतौर ख़ास कि बे इंतहा एहतियात करें, या वो लोग जिन्हें ऐसी बीमारियां हैं जो अंदरूनी बीमारियां हैं उनसे बचें, और उनसे बचने का तरीका यह है कि छांव में रहें और ढेरों पानी का इस्तेमाल करें। बुजुर्गों के लिए आज भी वही हिदायत है कि बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर ना निकलें। बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है माँ बाप को, गाहे बगाहे उन्हें पानी शरबत और आइसक्रीम से उनकी तवाज़ा करते रहिए, और अगर खेलने निकलते हैं तो उनसे कहिए कि छांव में खेलें, इसलिए कि ये गर्मी की पांचवी लहर है जो बरतानिया में आई है। और हम तो अल्लाह का करम फजल है कि 35-36 तक, 35 सेल्सियस, 36 सेल्सियस तक जाएगा। कुछ इलाकों में आज 38-39 क्रॉस करने की भी उम्मीद की जा रही है। सो हम सबका फ़र्ज ये है कि अपने बुज़ुर्गों की, बच्चों की बतौर ख़ास हिफाजत करें, और माओ पर यह लाजिम है क्योंकि हस्बैंड तो जॉब पे होंगे, कि अगर बच्चे छुट्टियां हैं और घर में मौजूद हैं और बाहर खेल रहे हैं, गार्डन में हैं, तो उनसे कहिए कि वो सिर्फ छाए, जहाँ जहाँ छाँव हो वहाँ वहाँ खेलें। बसूरत दीगर उन पर निगाह रखना बेइंतहा ज़रूरी है। मैंने खुद आते ही बर्फ तो नहीं, हाँ जग भर के मैं रख गया था फ्रिज में, आते ही आधा जग पानी पिया है मैंने, और जितनी देर में आपसे गुफ्तगू की है ये ठंडा पानी भर के लाया हूँ। वन फोर्थ बॉटल ये पानी का मैं तो वैसे ही इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन आपसे भी दरख्वास्त है कि आज पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाहर निकलने से गुरेज करें, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकलिए, बसूरत दीगर घर से ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं है। पंखे मेरा ख्याल अब हर घर में मौजूद हैं, पंखा चला के रखिए, और अगर धूप आ रही है कमरे में तो भी अपना ख्याल आपको रखना है कि उसको कवर कर दें, पर्दा डाल दीजिए या वो, ताकि ठंडक महसूस रहे। मेहमानों की आमद का सिलसिला हमारी आमद के साथ ही शुरू हो चुका है, जिनका तारुफ हम उस गीत के पहले तोहफे के बाद कराएंगे जिसे हम अपने उन तमाम चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले अहबाब के नाम करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करते हैं। गज़ल उसने छेड़ी का आगाज़ उसके नाम नामी से हो चुका है, जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदाबंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कहकर अरदास करता है, और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी वक्त, किसी भी लहजा, किसी भी आन, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं,
मांगते एक ही से हैं और बेशक वो हम सबका रब है, वो हम सबका रब्बुल आलमी है।

तो आइए गजल हुस्न थ्योरी का आज गर्म तरीन दिन है यहाँ ब्रेडफोर्ड में। इस वक्त हमारे यहाँ स्टूडियो में जो टेम्परेचर है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ 36 सेंटीग्रेड है, लेकिन मैंने खिड़कियाँ दरवाजे फुल खोल रखे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर आज लगाने का दिन है, वो भी अभी मैं लगाता हूँ ताकि आपका हमारे साथ इत्मीनान के साथ गुजरे। आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जो मेहमान तशरीफ ला चुके हैं उनका तारुफ होगा इस खूबसूरत तोहफे के बाद, जिसे हम आपकी, अपने सामीन और नाजरीन की और अपने उन सोते मुजाहिदों और नादीदा लिसनर्स के नाम कर रहे हैं जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। जब आप सुन रहे होते हैं तो हमें यहाँ तादाद आती रहती है, तादाद हम इसलिए नहीं बताते कि नज़र लग जाती है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नज़र बद से बचाए और सेहत से रखे। आप सबकी मोहब्बत हो, चाहत हो और प्यार के नाम इस खूबसूरत गीत से आगाज कर रहे हैं।

और दोस्तों अब ताज़ुफ हो जाए हमारे उन मेहमानान गिरामी का जो हमारे बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। हमारे हमराह मौजूद हैं रियासत साहब हडर्सफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं से, वक़ार मियां मौजूद हैं हमारे वेकफील्ड से, चौधरी रुखसार अहमद साहब तशरीफ लाए हैं मैनचेस्टर के सनती शहर से, खाली हाथ नहीं आए हैं। मैं अभी वही बंदोबस्त कर रहा था चीज़ें, क्योंकि कूलर वगैरह का इजाफा किया है मैंने यहाँ, तो जगह बनाना पड़ी आपके भेजे हुए हसीन खूबसूरत गुलदस्ते की, जिसमें आपकी मोहब्बत और फूलों की खुशबू ने इस गर्म दिन में, आपको पता है कि फूलों की खुशबू बढ़ जाती है गर्म मौसम में, और ऐसा ही हुआ है, पूरा स्टूडियो हमारा महक रहा है। जीते रहिए, हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। चौधरी रुखसार अहमद साहब तशरीफ लाए हैं लैया पंजाब पाकिस्तान से, नज़ीर अहमद साहब हमेशा की तरह उनका पैगाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, और मेरे लिए दुआ कि अल्लाह आपको सलामत रखे, प्रोग्राम अच्छा है, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपके लिए भी, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे रियासत साहब, वक़ार साहब, चौधरी रुखसार अहमद साहब ने मोहब्बत भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश किया है और कहते हैं कि बहुत एहतियात कीजिए। तशरीफ़ लाई हैं हमारी बिटिया सुमैरा ब्रैडफोर्ड 3 से, तशरीफ़ लाई हैं हमारी मोहतरम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, मौजूद हैं रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, और इन्होंने भी तमाम अहबाब ने आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है।

0: साथ ही साथ बड़ी खुशाइन बात यह है, आज हमारी खुशनसीबी है कि मुजफ्फरगढ़ आजाद कश्मीर से हमारे मोहतरम मेरे बुजुर्ग बैतुल हफ्फाज के रूह रवां हजरत साजिद अकरम राजा साहब हमारी महफिल में शामिल हैं। और ये देखिए किस कदर हमारी खुशनसीबी है कि वो हमें याद कर रहे हैं, कहते हैं कि रिफत अब्बास साहब सलामत रहें, अल्लाह ताला सेहत और आफियत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आज सफर बैतुल्लाह के लिए रास्ते में मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का सफर कर रहा हूँ। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, कहने की तो कतई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आप इस वक्त इस कदर मुकद्दस और मुअत्तर सफ़र पर रवानगी कर रहे हैं जिसकी आरजू करते हैं लोग, यानी आपका सफ़र इस वक्त हो रहा है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का सफ़र। ये नसीब वालों को नसीब होता है, अल्लाह ताला आपकी इस हाजिरी को कबूलियत का शर्फ बख्शे। खुश नसीब हैं आप कि आपको गाहे बगाहे वो अपने दर पर बुला लेते हैं। सलाम तो आप पहुंचा ही चुके बारगाह रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अब खाने काबा की ज़ियारत का मरहला जो तय करने आप जा रहे हैं, हमारा सलाम और हमारी दरख्वास्त पहुंचा दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत से रखे और आपकी इस हाजिरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। साजिद अकरम राजा साहब, मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे इस मुबारक सफ़र में याद कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि आप किस कदर मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। दोस्तों, साजिद अकरम राजा साहब को मैंने इज्जत व एहतराम इस कदर क्यों दिया, क्योंकि ये उन खुशनसीब बाप में से हैं जिन्होंने यह अहद किया था कि अपने तमाम बच्चों और बच्चियों को मैं हाफिज़ क़ुरान बनाऊंगा, बच्चियों को हाफ़िज़ा और बच्चों को हाफिज़, और इन्होंने इसको नहायत कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। इनके तमाम बच्चे और बच्चियां हाफिज़ क़ुरान बन चुके हैं, बहुत बड़ा एजाज़ है। एक हाफिज़ का वो मकाम है कि साथ पूछते बख्शवाता है, यहाँ तो घर का घर हाफिज़ बना हुआ है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर करीम अता फरमाए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। साजिद अकरम राजा साहब, हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी टू मक्का। मुझे पता है कि यहाँ आज हमारे यहाँ इस वक्त 36 है, इस वक्त स्टूडियो में हमारे यहाँ टेम्परेचर बाहर आज 36 तक जाने का इम्कान मौजूद है। सख्त हफ्स है और लोग बेइंतहा परेशान हैं और अंडर वार्निंग मौजूद है, तो मक्का मुकर्रमा में तो गर्मी का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला आपकी और आपके हमराह जो लोग हैं उनकी हिफाजत फरमाए। बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब।
1: दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी, मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी, गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन, मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं, वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे, है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में,
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
5: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल।
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
5: आप भी
4: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
7: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
5: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
1: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
9: टैक्सी लाइसेंस,
8: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
8: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio.
5: आज के इस गर्म तरीन दिन में ब्रैडफोर्ड की तारीख में, जबकि टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, और मैंने जैसा कि बताया था, मैंने पूरा बंदोबस्त किया है, खिड़कियां दरवाजे खोल रखे हैं, पंखा और कूलर भी मैंने अभी लगा लिया जिस दौरान आप कम ये सुन रहे थे, ताकि मैं आप तक आपका प्रोग्राम पहुँचा सकूँ। कुछ थोड़ी सी मुदाखलत होगी, या तो ये पर्दों की आवाज़ आ सकती है और पीछे से गाड़ी की आवाज़, लेकिन न होने से होना बेहतर है। अब हम चल रहे हैं मैनचेस्टर के सनती शहर, लेकिन वहाँ आपको ले जाने से पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे खारिया गुजरात पाकिस्तान से, अभी अभी हमारी बज में शामिल हुए हैं परदेसी मजीद साहब, और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, सबको मेरा सलाम कहना। शकील साहब, रिजवान साहब, चौधरी रुखसार अहमद साहब को ढेरों दुआएं, शकील साहब और नवीद साहब को भी मेरा सलाम और ढेरों दुआएं। आपके लिए खुसूसी दुआएं मांगता हूं जी। मौसम कैसा है? मौसम बहुत गर्म है यहाँ, और 36 सेल्सियस हमारे यहाँ टेम्परेचर है इस वक्त, और बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यहाँ पर जो घर हैं वो सर्दी के हिसाब से बने हुए हैं, तो घर भी तप जाते हैं गर्मी की वजह से, बजाय इसके कि वो ठंडे हों, लेकिन बहरहाल पंखों वगैरह का यहाँ बंदोबस्त सब मौजूद है, और मैं भी इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिला तो मैं एक एसी का यूनिट चाह रहा हूँ, कि अब उसकी ज़रूरत, ऐसा मौसम होने लगा है कि एसी की ज़रूरत होगी। एक ज़माने में यहाँ किसी घर में पंखा नहीं होता था, सब कुछ अल्लाह ने नवाजा हुआ। लोग कहते थे, यार इतने अमीर आदमी हैं, पंखा एक नहीं है घर में। आज हर घर में पंखे मौजूद हैं, बल्कि पंखों का आलम यह है कि मैं अभी सुबह न्यूज़ देख रहा था कि मार्केट में पंखे दस्तयाब नहीं हैं, फैन इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, कूलर तो बिल्कुल मार्केट से गायब है। बहरहाल अब हमें भी लगता है कि हमें भी एसी लगवाना पड़ेगा घर में भी, और यहाँ शाजी से मैंने कह रखा है कि शाजी एसी लगाइए, ज़रूरी है बहुत, देखते हैं कब वादा वफा होता है। अब हम चलते हैं मैनचेस्टर के सनती शहर, और मौजूद हैं वहाँ हमारे बड़े मोहतरम चौधरी रुखसार अहमद साहब, जिन्होंने ये फूलों का गुलदस्ता भेजा है, ये रखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, नज़र आया आपको? नहीं, नहीं आएगा, लेकिन उसकी खुशबू शायद आपको मेरी आवाज़ के साथ हवा के जोश पर पहुँच जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, اپنے حفظ و امان میں رکھے، بے شمار دعاؤں سے نوازتے ہیں چودھری رخسار رحمت صاحب، ہماری ڈھیر دعائیں آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول کیجیے۔ اس کے بعد سمیرا بٹیا، کل ہم آپ کا تحفہ آپ کی کزنس تک نہیں پہنچا سکے تھے، تو وہ بوجھ ہمارے کندھے پر ہے، وہ تحفہ ہم آج، آپ تشریف تو لا ہی چکی ہیں، سو ہم آپ کا وہ تحفہ آپ کی پیاری پیاری کزنس کے نام میں رسبرا کریں گے اس گیت کے بعد۔ پہلے چلتے ہیں مانچسٹر۔

0: दोस्तो चोई साहब, आपकी पसंद तो आला होती ही है, आपकी आमद भी हमारे लिए बहुत बाइस इफ्तिखार होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अभी अभी हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं हमारे खूबसूरत लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब बनले से, और सुनना चाहते हैं एक खूबसूरत गीत जो हम उनकी नज़र करेंगे। लेकिन कल का एक उधार मुझे चुकाना है। मैं चाहता हूँ कि गर्मी वैसे ही ज़्यादा है, कंधों पे बोझ अच्छा नहीं लग रहा, इसे उतार दूँ। ब्लडफोर्ड 3 से हमारी बिटिया जो आगाज़ प्रोग्राम में ही तशरीफ़ ला के ढेरों दुआओं से मुझे नवाज चुकी हैं, जिनके लिए मैं ख़ुद भी बहुत हमेशा दुआगोर रहता हूँ। बिटिया बार बार ये मत कहा करो कि मेरे लिए दुआ किया करें। हमारी सारी बेटियां जो हमारे प्रोग्राम में शरीक होती हैं, हमारे दुआओं में वो शामिल रहती हैं, और इंशाल्लाह हम उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। आपकी प्यारी प्यारी कजन्स को मोहब्बत भरा सलाम, जो इस वक्त मौजूद हैं मिडिल्सब्रा में। अहले मिडिल्सब्रा को भी मेरा सलाम पहुँचे। भाई आज गीत बड़ा खूबसूरत मुंतखब किया है, मैं पूछना भूल गया कि ये आपकी कजन्स की पसंद है या आपकी पसंद है। जिसकी भी है बहुत लाजवाब है। अल्लाह ताला आप में और आपकी कजन्स में ये मेल मोहब्बत का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रखे। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।
1: ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा।

नर्ग से मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हम

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे

0: साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
5: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल।
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
5: आप भी
4: जरूर आइएगा। उफ़, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio.

दोस्तों वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत और दो फनकार। आज हमारी इस बज़्म में आप तक पहुंचाने के लिए 1981 में

एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुदरत। गीत के बोल तहरीर किए थे कतील शिफाई ने, मौसीकी से इसे संवारा था लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन ने। इस गीत के बेशुमार खूबसूरत पहलू भी हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत तरीन पहलू यह है कि क्लासिकल सिंगर जिनका शुमार गजल की माहिरीन में किया जाता है और उन्हें उस्ताद होने का एजाज हासिल है, परवीन सुल्ताना साहिबा ने वो गीत गाया था। गीत के बोल थे, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे सिवा। फिल्म कुदरत 1981, और ये गीत हेमा मालिनी पर इनकी आवाज में और राजेश खन्ना पर किशोर कुमार की आवाज में फिल्माया गया। इस गीत ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड इस गीत के नाम हुआ, जिसे तहरीर किया था कतील शिफाई ने, मौसीकी से संवारा था R.D. बर्मन ने और आवाजों का जादू जगा रहे थे लेजेंडरी दो सिंगर्स किशोर कुमार और परवीन सुल्ताना। आज का यही गीत हमने आप तमाम सामईन और नाजरीन के लिए मुंतखिब किया है। दोस्तों, फिल्में आती हैं, फिल्में चली जाती हैं, लेकिन उनके कुछ गीत अमर गीतों में शामिल हो जाते हैं और ये उन्हीं अमर गीतों में से एक गीत है। तो आइए, एक शायर, आज के शायर हैं कतील शिफाई, जिनके मुतालिक बताना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेशुमार फिल्मों में उन्होंने गीत तहरीर किए और उनके गीत मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे, और सोने पे सुहागा ये कि कतील शिफाई के अशआर हों और आवाज मोहतरमा परवीन सुल्ताना साहिबा की हो और मौसीकी से उसे संवारा हो R.D. बर्मन ने, तो उसकी क्या शान होगी। दो आदशा नहीं, सै आदशा हो जाएगा। तो आइए, एक शायर एक गीत दो फनकार का आगाज करते हैं और दावत देते हैं मोहतरमा परवीन सुल्ताना साहिबा को। इन्होंने फिल्मों के लिए बहुत कम गीत गाए हैं, बल्कि शायद शाज़ो नादिर ही आपको इनकी आवाज़ में गीत, फिल्मों के गीत नहीं गाती, क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन R.D. बर्मन की ख्वाहिश पर इन्होंने इस फिल्म के लिए ये गीत गा दिया और वो गीत अमर गीतों में शामिल हो गया।

0: میرے محبوب وطن مجھ کو قسم ہے تیری، میرے محبوب وطن مجھ کو قسم ہے تیری، گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن، میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں، وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے، ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے؟ تمام اہل وطن کو بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو، پاکستان زندہ باد۔
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਰਦੀਆਂ।
3: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
4: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में,
3: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
4: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
3: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
4: लीज रोड फेस्टिवल।
3: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
4: आप भी
3: जरूर आइएगा। उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
3: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644।
5: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
4: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10-6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइट रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio.
7: दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बंडे लेके चलें, बंडे से, जी हाँ, बंडे से हमारी वो खूबसूरत सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और देखते हैं आज आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। जी हाँ, सही पहचाना, शकील साहब, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मैं ज़रा कूलर की आवाज़ कम कर दूँ। चलते हैं बंडले। अस्सलाम वालेकुम।
8: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: वा अला इबादिल्लाहि सालिहीन। शकील भाई कैसे हैं?
8: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है। आप सुनाए कैसे हैं?
7: अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, बस आज गर्मी गर्मी गर्मी और गर्मी कह रहे हैं।
8: ये तो गर्मी है नहीं, गर्मी तो पाकिस्तान में आती है।
7: आपकी तरफ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहाँ कम होगी मैं लगता।
8: यहाँ तो हम गर्मी की दुआ करते हैं, पाकिस्तान में हम सर्दी की दुआ करते हैं, तो जब गर्मी आती है तो हम शिकायत करते हैं।
7: ये बस इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता।
8: नेक्स्ट वीक जो है आप वो पूरी हो जाएगी, बारिशें आ जाएंगी,
7: जी हाँ,
8: ये भूल जाएंगे आप गर्मी।
7: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
8: ठीक है, तो सब सुनने वाला तो मैं फिर से अस्सलाम वालेकुम।
7: जी जी,
8: इनमें खाले चली मीर साहब हैं, नवीद भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, सूफी अब्दुल करीम साहब, रिजवार रिजवीन की अली हैं, अयूब भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, तारिक सुल्फी साहब, हाशमी हाउस वाले, माइयों परवेज साहब, तौसीफ अहमद हैं, मजीद भाई हैं, वसीम शाह, लोहा शफी, नकवी साहब, महबूबुल्लाह शाह साहब, सबको मित्र से अस्सलाम वालेकुम।
7: आपके तमाम अहबाब तक जिनके इस्माई ग्रामी आपने लिए हैं, आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा।
8: तो ये एजाज कुरैशी है, उनकी गजल है,
7: अता फरमाई।
8: जिधर भी देखिए हर सू हमें रविवार मिलते हैं।
7: वाह वाह वाह, क्या।
8: जिधर भी देखिए हर सू हमें रविवार मिलते हैं, जहाँ पर हम कदम रखे वहीं पर खार मिलते हैं।
7: हाँ, क्या बात है, जहाँ पर हम कदम रखे वहीं पर खार मिलते, क्या बात है शकील भाई।
8: शुक्रिया। जिधर भी देखिए हर सू हमें अभियार मिलते हैं, जहाँ पर हम कदम रखे वहीं पर खार मिलते हैं। सुनाओ माजराए गम कैसे इस गम के आलम में,
7: सुनाओ माजराए गम कैसे इस गम के आलम में,
8: सुनाओ माजराए गम कैसे इस गम के आलम में, कि इस नगरी के बासी जान से बेजार मिलते हैं। हजारों साथ देते हैं खुशी के आलम में पहम,
7: बेशक, क्या मिसरा है, हजारों साथ देते हैं,
8: हजारों साथ देते हैं खुशी के आलम में पहम कि जब किस्मत बिगड़ती है कहां फिर यार मिलते हैं।
7: वाह वाह वाह वाह शकील भाई, अता कीजिए प्लीज।
8: हजारों साथ देते हैं खुशी के आलम में पहम कि जब किस्मत बिगड़ती है कहां फिर यार मिलते हैं।
7: कहां फिर यार मिलते हैं भाई, वाह वाह वाह वाह।
8: खिजा ने कर दिया पामाल यारो गुलशन हस्ती,
7: खिजा ने कर दिया पामाल यारो गुलशन हस्ती
8: के हर जानिब हमें उजड़े हुए गुलजार मिलते हैं।
7: क्या बात है क्या बात है, क्या मुरस्सा इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
8: शुक्रिया। न घबरा है दिले मुस्तर ये दस्तूर जमाना है,
7: न घबरा है दिले मुस्तर ये दस्तूर जमाना है।
8: मोहब्बत करने वालों को फकत आजार मिलते हैं।
7: क्या सच्चा शेर है भाई, अता कीजिए भाई, वाह वाह वाह वाह।
8: न घबरा है दिले मुस्तर ये दस्तूर जमाना है, मोहब्बत करने वालों को फकत आजार मिलते हैं।
7: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह।
8: नसीमे सुबह गुलशन में नए गुंचे खिलाती है,
7: मंजरकशी है नसीमे सुबह गुलशन में नए गुंचे खिलाती है।
8: सभी अहले मोहब्बत अहले दिल सरशार मिलते हैं।
7: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
8: शुक्रिया। आखिरी शेर कहते हैं,
7: अता कीजिए।
8: कभी ऐसा भी एजाज मोहब्बत रंग दिखाता है, कभी ऐसा भी एजाज मोहब्बत रंग दिखाता है, तलब की राह में अक्सर हमें गम ख्वार मिलते हैं।
7: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
8: शुक्रिया। तो एक गजल है प्याम फतेहपुरी, इनका नाम है,
7: अता कीजिए। बिस्मिल्लाह।
8: प्याम प्याम फतेहपुरी।
7: जी जी अता कीजिए।
8: तो कहते हैं हजार हम पर सितम करेंगे, हजार जोर जफा करेंगे।
7: हजार हम पर सितम करेंगे, हजार हम पर जोर जफा करेंगे।
8: न हमने तरके वफा किया है, कभी न तरके वफा करेंगे।
7: क्या बात है, क्या रवानी है, क्या रवानी है, वाह वाह वाह।
8: हजार हम पर सितम करेंगे, हजार जोर जफा करेंगे, न हमने तरके वफा किया है, कभी न तरके वफा करेंगे।
7: क्या बात है, क्या मुसम्मम इरादा है, वाह वाह वाह वाह।
8: नहीं है आसान वफा की राहें, कदम कदम है नई कयामत।
7: नहीं है, सही, बहुत खूबसूरत मिसरा है, वाह वाह वाह वाह।
8: नहीं है आसान वफा की राहें, कदम कदम है नई कयामत, खिर्द कहाँ अपने काम आई, जनू को अब रहनुमा करेंगे।
7: वाह वाह वाह, जनू को अब रहनुमा करेंगे, क्या बात है।
8: न कोई दुश्मन बुझा सके हैं, न कोई दुश्मन बुझा सके हैं, न कोई आंधी बुझा सकेगी, चिराग चिराग उल्फत के रहे जहाँ में, जला किए हैं जला करेंगे,
7: जला किए हैं जला करेंगे, वाह वाह वाह वाह।
8: इस जहाँ में जला किए हैं जला करेंगे,
7: वाह वाह वाह वाह।
8: दुश्मनों से भी प्यार हमको कि दोस्ती है शियार अपना,
7: क्या खूबसूरत मिश्रा है साहब। है दुश्मनों से भी प्यार हमको,
8: है दुश्मनों से भी प्यार हमको कि दोस्ती है शियार अपना, बिछाएंगे जुरा में कांटे हम उनके हक में दुआ करेंगे।
7: आ हा हा हा, बिछाएंगे जुरा में कांटे हम उनके हक में दुआ करेंगे, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
8: शुक्रिया। नहीं है ऐशो तरब की महफिल, नहीं है ये ऐशो तरब की महफिल, मकाम है जो दो अमन है दुनिया,
7: आहा
8: उन्हीं को जीने का हक मिलेगा जो जीस का हक अदा करेंगे।
7: वाह वाह वाह, उन्हीं को जीने का हक मिलेगा जो जीस का हक अदा करेंगे, वाह वाह वाह वाह।
8: प्याम फतेहपुरी आखिरी शेर कहते हैं,
7: अता कीजिए।
8: प्याम नाकाम है तो क्या है, नहीं है फितरत में ना उम्मीदी, प्याम नाकाम है तो क्या है, नहीं है फितरत में ना उम्मीदी, कर्म की उम्मीद पर है जीना, कभी तो मेरो वफा करेंगे।
7: क्या बात है कयाम साहब की, क्या बात है, अता कीजिए मख्ता।
8: प्याम नाकाम है तो क्या है, नहीं है फितरत में ना उम्मीदी, कर्म की उम्मीद पर है जीना, कभी तो मेरो वफा करेंगे।
7: भाई वाह वाह वाह वाह, क्या बात है शकील भाई, इस कदर मुरस्सा कलाम देकर आप हमारी बज़्म में आते हैं। आपको मोहब्बत भरा सलाम परदेसी मजीद साहब ने वाव वाव की एक कसीर तादाद के साथ कहा है। और शकील भाई, हम खाली हाथ रुख्सत नहीं कर रहे, आपका पसंदीदा गीत आपके हमराह भेज रहे हैं, कबूल कीजिए।
8: शुक्रिया, अल्लाह
7: हाफिज। अल्लाह हाफिज।

शमा, आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में और इस घर का उसूल रहा है कि नई दुल्हन को पहले दिन कीमती तोहफों से नवाजा जाता है। मांगो, क्या मांगती हो?

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। ये पसंद थी हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब की बर्थडे से। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अब वक्त हुआ है हम आपको लिए चलें खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान, जहाँ मौजूद हैं हमारे खूबसूरत लिसनर जनाब परदेसी मजीद साहब, और उनका तोहफा उनकी नज़र करें। उससे पहले हम माजरत के साथ बहुत ताखीर से हम अनाउंस कर रहे हैं, हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर मोहम्मद ताहिर गशकोरी साहब, जी हाँ मोहम्मद ताहिर गशकोरी सनवान साहब पंजाब से हमारी बज़्म में काफ़ी देर पहले शामिल हुए थे, और इत्तेफाक ये है कि उनका मैसेज मेरी निगाह से ना गुजर सका था। अभी मैंने देखा तो उनका नाम नोट कर लिया, और अब मैं उस गलती का इजाला कर रहा हूँ। फोन में कल की तरह आज भी इस कदर ज़्यादा गर्मी है कि वो लीड लगाई तो उन्होंने कहा कि इस कदर ज़्यादा बहुत शदीद गर्मी है, हम इसे मज़ीद चार्ज नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं कब तक हमारा साथ देता है और हम आपके साथ मौजूद रहते हैं। तो चलते हैं तोहफे की जानिब परदेसी मजीद साहब के इस खूबसूरत शेर के साथ के छुपाए दिल में गमों का जहान बैठे हैं। छुपाए दिल में गमों का जहान बैठे हैं, तुम्हारी बज़्म में हम बेज़बान बैठे हैं। चलते हैं खालियाँ गुजरात पाकिस्तान और परदेसी मजीद साहब का तोहफा उनकी नज़र करते हैं। आमद का बेइंतहा शुक्रिया हमेशा की तरह।

0: Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी, मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां
4: 306677
7: सीधे दिल विच तीर ने मार दिया ये सोनिया अखियां यार दिया
5: प्लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला

0: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
0: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
0: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
0: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
7: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

और दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं डनकास्टर सिटी। मैं इसकी आवाज़ कम कर दूं, कूलर की आवाज़ ज़रा ज़्यादा है तो छोटे वाले पे चलाता हूं। जिस दौरान आप गीत सुन रहे होते हैं मैं इसे फुल कर देता हूं। सो अब चलते हैं डनकास्टर सिटी। सिराज मुनीर भाई आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। और वकार मियां अभी लेक डिस्ट्रिक्ट में ही हैं अली खाना के हमरा, और आज वो विंडो मेयर के बजाय बटर मेयर में मौजूद हैं और सब लोग एक खूबसूरत घने दरख्त के साए में बैठे हैं और सामने झील है। क्या बात है यार, अल्लाह आप सबको नजरबद से बचाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये वाकई मौका था लेक डिस्ट्रिक्ट जाने का, अगर वक्त हो तो ज़रूर अपने अहले खाना के हमरा, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट ज़रूर जाएं, जन्नत नज़ीर है, बस इतना कह सकता हूं मैं। तो चलते हैं सिराज मुनीर साहब के तोहफे की जानिब। उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे नाजुक कांधों पर डाल दी थी कि रिफत भाई अपनी पसंद का कोई भी गीत मेरे नाम कीजिए, मैं आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ। सो मैंने वो गीत मुंतखब किया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके बाद हम आपको बटर मेयर लेक डिस्ट्रिक्ट लिए चलेंगे और वकार मियां आपका और आपके अहले खाना का तोहफा आपकी नज़र करेंगे। लेकिन अभी तो चल रहे हैं डनकास्टर सिटी, बताइएगा गीत कैसा लगा सिराज मुनीर भाई। और हाँ अयूब चौहान साहब, आपके इस खूबसूरत गीत को बेइंतहा पसंद किया है स्वीडन में नवीद भाई ने, और कहते हैं अयूब भाई क्या पसंद है आपकी। दोस्तों मसरूर अनवर का लिखा हुआ ये गीत था और दीपू भट्टाचार्य एक बहुत हमारे बड़े मौसीकार थे बंगाली, उन्होंने इसकी मौसीकी को तरतीब दिया था। बहुत खूबसूरत गीत है, मसरूर अनवर के बोल थे और आवाज़ थी सुरैया मुल्तानी कर की। फिल्म का नाम था बदनाम। अमर गीतों में से एक गीत था जो आज अयूब चौहान साहब ने मुंतखब किया था। अब चलते हैं डनकास्टर सिटी और मेरी पसंद जनाबे सिराज मुनीर साहब आपके नाम, मैंने नाम टिक नहीं किया अभी आपका, अब करूँगा।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम ए पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़ियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
5: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
8: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio.
4: और आइए दोस्तों, आपको लेक डिस्ट्रिक्ट लिए चलते हैं, जहां बटरमेयर में इस वक्त झील के किनारे बैठे हुए वकार मियां अपने अहले खाना के साथ और अपने बच्चों की पसंद का ये गीत सुनना चाहते हैं। हैव अ नाइस टाइम देयर। हमारी ढेर दुआएं आपके साथ हैं वकार मियां। अल्लाह आपको सलामत रखे। नवीद हो कि आगाज प्रोग्राम में रियासत साहब तशरीफ तो ले आए थे, लेकिन बच्चों के हमराह कहीं बाहर घूमने फिरने गए थे, अब घर वापस आ चुके हैं और नमकीन लस्सी का दौर चल रहा है और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। कहते हैं कि आज का ये गीत मेरी जीवन साथी की पसंद है, सर आंखों पर। लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं बटरमेयर लेक डिस्ट्रिक्ट, जहां वकार मियां अपने अहले खाना के साथ मौजूद हैं और बच्चों की पसंद का ये गीत सुनना चाहते हैं। हाजिर है। हैव अ नाइस टाइम।

दोस्तों तशरीफ ला चुके हैं भगत सिंह साहब भी, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उनका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अभी वक्त है, बर वक्त आप आए हैं, इंशाल्लाह आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चल रहे हैं उस गीत की जानिब जो सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हज़रत रसूल की हसीन फ़िज़ाओं से रियासत साहब की शरीक हयात ने। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। नमकीन लस्सी का एक गिलास मुझे भी भेजिएगा, इसलिए कि मैंने भी कल जाते ही घर जो पहला काम किया था वो ये था, एक कद आदम मेरे बहनोई ने पाकिस्तान में लाहौर गया था, गिलास दिया था स्टील का लस्सी का, जो ख़ास गिलास होता है, वह हमें 3 गिलास दिए थे। मेरे बहनोई अब इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं, लेकिन उनकी वो हसीन यादगार कल मैंने फिर इस्तेमाल की थी, भर के लस्सी का नमकीन गिलास पिया था, आज भी यही इरादा है। अभी तो चल रहे हैं हज़रत फील्ड, आप लस्सी पीजिए, मेरे लिए एक गिलास ज़रूर निकाल रखिएगा, मैं ठंडा पानी पीकर गुजारा कर लूँगा जब तक।

क्षमा खराशी के लिए माजत खा हूँ कि मैं गलत गीत लगा बैठा। गीत जो उन्होंने सुनना चाहा था वो कुछ यूं था।

0: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं

0: पीस, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच मोगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स,
3: ब्रेडफोर्ड्स नंबर 1 एशियन कम्युनिटी रेडियो, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम ए पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़ियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR, टेलीफोन 07885।
9: शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस

0: Bazaar, Bobby's Carpets, Listed Dive, Traffic Lights, Old Mr. Value Buildings, BD3ADN. Bobby आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है.
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 डेज. पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA. फोन 01274306567. बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन.
0: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर.
3: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं.
0: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए.
0: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678.
0: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है.
4: Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया कुड़ियां लौटियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्बर रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
9: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
9: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679
8: UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: You're listening to Bradford Asian Radio on 1430.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078 डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07

0: Aruli Avenue, Bradford, BD61DA, phone 01274306567, behind Shell Petrol Station.
1: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट्स जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब ले एतमाद नाम मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन वीएटी बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं नोटरीज भी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स मैं नोटरीज भी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं नोटरीज
2: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया कुड़िया लौटियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस 106
5: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट,
11: द हिंदी उर्दू म्यूजिक शो ऑन ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं तो

पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग।

पीछे नहीं हटूंगा, वही इलाकों

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
2: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: अज मेला देखण आईया कुड़ियां लौटियां
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्बर रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: पैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
2: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

मैं तन्हा था, मंजिल मंजिल भटक रहा था, तन्हाई का बोझ उठाए, दिल में अपना दर्द छुपाए, मैं तन्हा था। यूं ही एक दिन चलते चलते हुस्न का जलवा सामने आया, बेहद रंगे बेहद सादा, सांसों में संदल की खुशबू, उसमें था कुछ ऐसा जादू, यूं मेरे एहसास बिछाया, उसकी नजर से रोशनी लेकर मैंने दिल का शहर सजाया, मैंने रस्म राह बढ़ाकर अपना उसे महबूब बनाया, मैंने उसमें क्या कुछ देखा, मैंने उसमें क्या कुछ पाया, मैं ये बात बताऊं कैसे, लफ्जों की जंजीरें उसके हुस्न

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
4: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
3: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?
4: आएगा, आएगा, आएगा।
5: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
6: And the winner is
7: your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
9: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में,
8: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
9: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
8: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
9: लीड्स रोड फेस्टिवल।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
9: आप भी
8: जरूर आइएगा। उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
9: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644।
10: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
5: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.
13: 30777 call key. Bradford Asian Radio.
5: Bradford Asian Radio. Call studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Blackford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़ियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में,
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
5: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड रोड फेस्टिवल।
4: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
5: आप भी
4: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team
11: on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
12: वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदा मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेड एशियन रेडियो, मीडियम 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया गुड़िया लौरदियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
0: टू बिकम अ रेडियो प्रेजेंटर Please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
9: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट
10: टैक्सी लाइसेंस
8: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
9: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
8: safewayrider.co.uk UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों किसी नई जगह जाने को जी चाहे
2: क्यों नहीं कहती जाने का इरादा है
1: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
5: ओपन 7 डेज 10 to 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड 9627229627
4: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: बदतमीज जानवर।
4: ओ लल्ला।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
6: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल।
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
6: आप भी
5: जरूर आइएगा। उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team
11: on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: सुनते हैं अगली बार खाने का इंतजाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेड फूड में सिर्फ कबाड़ी या बंगला किचन वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है
1: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कह के मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग 77 आर्थिंगटन स्ट्रीट ब्राडफोर्ड BD8 ATY
1: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
2: इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है फर्स्ट क्लास विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल इंटरवल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया कुड़िया लौंदियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
5: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
5: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाई
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवत लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स
8: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी, मेरे वतन के उदास लोगो, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
5: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल।
4: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
5: आप भी
4: जरूर आइएगा।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट्स, ऑडिटर,
0: अकाउंटेंट्स। रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी मेरे महबूब वतन मुझको कसम है तेरी गर मेरे खून से निखरे तेरा गुलाब बदन मैं अपने जिस्म में गर एक बूंद रहने दूं वो बूंद मेरे जिस्म को अंगार करे है कोई मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करे तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: अज मेला देखण आईया कुड़ियां
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
5: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
5: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन खाए
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
5: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
7: बालियां अंगूठियां और हार
5: जो दुल्हन करे सिंगार
7: आज ही मामू काके की दुकान
5: खालिस सोने की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
7: आपकी शान
5: हमारी आन
7: क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
5: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
7: saferaider.co.uk
8: Okay.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पे जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। तमाम अहले वतन को ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हुब्बुल वतनी के सच्चे जज्बों के साथ यौमे पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में,
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।
5: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड रोड फेस्टिवल।
4: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
5: आप भी
4: जरूर आइएगा।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.